वारी वंजा खनिए वंजा तौ साहिब के नामे ऐ परमेश्वर मैं तेरे तुवारी तेरे नाम तो कुर्बान जाना तन गुरु नानक साहब जी बयान करते हैं। आओ अपनिया बिरतियां उस पासे ले चलिए। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नूं मिले नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए। बेबे नानकी जी

गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गए ते नाले कहन लगे जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पासे भाई अजय राव अपने सहुरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मथा टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज के दर्शन होंगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब के भाइया लगते ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने पर ओ रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते है भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते इन्हां ने हाथ जोड़ के आखिया बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानकी जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड्डन लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब दी याद विच जंगल वल तुर पए एक दरख दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब दा उचारिया होया ए शब्द गान लग पए अमली अमल ना अंबड़ै मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकते।

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ते नहीं हो सकता सात संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल है इन्हां गल्लां नूं कोई मन्ने भावें ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले साहब जी कहन लगे मरदाना भाई अजय राम नू वैराग विच उठा नहीं सके धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलता है और इस प्यार नूं ओही जानता है जिसने ये प्यार किया भगत कबीर जी कहंदे सो कत जाने पीर पराई जां के अंतर दर्द ना पाई भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए इको गल नजर आती भगत रविदास वो भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले दी कि ए प्रेमा भगती दे तीर जेड़े ने जिन्हों लग जाने जिन्हों तीर लगते ने ओही जाने

वंश मेरा खानदान वधे और दुनिया दे विच ए देखदे आ कि जिदे घर धी पुत्र ना होवे रिश्तेदार भी उन्हां नूं ताने ते मेहने मारदे ने।

गुरु अर्जन देव जी महाराज हुण इह तां गुरु नानक दी मेहर है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक दा रूप बन गए पर पृथ्वी चंद जिन्हां दा सुभाव माया वाला ईरखा वाला दुबदा वाला सी और महादेव उन्हां नूं किसे चीज दे नाल कोई मतलब नहीं सी। वड्डा भरा पृथ्वी चंद हर वेले गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल ईरखा करिया करदा सी। एक दिन दा जिक्र है गुरु अर्जन देव जी महाराज दे तर्मस पत्नी माता गंगा जी जिन्हां ने वेड़े दे विच कीमती कपड़े कीमती समान रखे है धुप लवाउण वास्ते कपड़िया नूं पृथ्वी चंद जी दी घरवाली करम कौर उसने जद छत ते चढ़ के माता गंगा जी दे घर वल देखिया रेशमी कपड़े गहने कीमती समान ते सड़ पल के कोले हो गई। करम कौर इह सारा कुछ देख के बर्दाश्त ना कर सकी मंजी ते आके लम्मे पै गई। पृथ्वी चंद बाहरों आए घरवाली नूं कहन लगे करम कौरे उदास क्यों है। करम कौर कहन लगी पृथ्वी चंद नूं अगर तुसी अपने पिता दा कहना मन्या हुंदा गुरु रामदास जी दा ते तुसी गुरु बनदे और ये सारा कुछ तुहानू मिलना सी तुसी पिता दी आग्या नहीं मन्नी सेवा सिमरन नहीं कीता ते ए गुरगद्दी तुहानू नहीं मिली पर तुहाडा छोटा भरा गुरु अर्जन साहब जिन्हां ने सेवा सिमरन

बड़ी धूड़ उड़ रही है, कौन आ रहा है? ता सेवका ने कहा, बाबा जी गुरु के महल आ रहे ने पाव, गुरु अर्जुन साहब दे धर्म सुपत्नी आ रहे। ता बाबा बुढ़ा जी ने सहस बाबचन कीता, गुरु पिया नू किधरों भाजना पै गई। माता गंगा जी आए, लंगर छकाया, पर बाबा जी ने पुत्र वास्ते कोई अरदास ना की। माता गंगा जी उदास हो

लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छारे हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवरे पाव सब मीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतारो करन कारण सो प्रभु समरत देकर गहो नाम हर वथ ए तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत। एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ ठुटकावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे परी करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनके उपावी रोग न जाए रोग मिटे हर औखद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन पर बोधो हर कह नाए दय दिस तावत आवे ठाए ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूजन होए आस भगत पाए आत्म परगास तित कर जाए बसाए अबनासी कहो नानक काटी जम फासी तात विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचू काचा आवा गवन मिटे प्रभु सेव आप त्याग सरन गुरुदेव इयो रतन जन्म का होए उतार हर हर सिमर प्राण आधार अनके उपाव न छूटन हारे सिमरत सास भेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम्बर बनिता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्थार इनते कहो कवन छुटकार आस हस्ते रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए किस बूझे न बजाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना वो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चन कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपाओ अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूत सथर को नाओ सहल सुपाए नानक गुन गाओ गुन गावत तेरी उतर समैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल छार स्यान पसगली मना साध संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दरगे जयकार सर्व निरंतर एको देख को नानक जाके मस्तक लेख एको जब एको सालाए एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप अनक विस्तार एक दे पहे एक अराध पराछित गए मन तन अंत।

मैं तेरे रस रस गुण गाऊं, मन करके तेरी मैं शिव चला करा, मन करके तेरी भक्ति करा। एक हन गुण गाउने, एक है रस रस गुण गाउने। गुण गाउंदिया तो भाई कई मेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्हों ने तेरे रस रस गुण गाए हैं उन्होंने तो आपे दी भी शुद्ध नहीं रही, उन्होंने तो अपना आप भी विसर गया। इसलिए अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गाव, तेरे विच गुआच जावा, तेरे गुण गाउंदिया

आप केस सुखा रहे हो, अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुखा रहे हन, ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ना, ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए उस केसां दी तार नूं वेख के, ते आप कहंदे ने दीन दुनिया दरक मंदे, ए दीन ते दुनिया तेरी जुल्फां विच वधे होए हन, इउं मालूम हो रहा तेरे एक रोम तो मैं दो जहान भी वार देवां तामी घट हन, दीन दुनिया दरक मंदे आप री रुख।

गमजे मैं गाने हूं, मेरे पास केड़ी वस्तु है जो मैं तेरे तो वारा, मान में आ रे मुताबे गमजे मैं गाने हूं, गमजे मैं गाने हूं, अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम आपने, तन मन होए निहाल जा गुर देखा शमन, मेरा तन मन निहाल हो गया, मैं सदके हो जावा तेरे एक एक केसा दे रोम तो, जिथे मेरी नजर जा टिकी है। तो भाई जो अपने गुरु तो सदके जांदे हन बलिहार जांदे हन, उना दा ए लोक भी सुखी होंदा है पर लोक भी सुहेला होंदा है। तो भाई साहब कहंदे न हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां, मान में आ रे मताबे गमजे मैं गाने ऊ, यक निगाहे जा फिजाए बस बवद दरकारे मां, गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर में शवद, रंग हाए मुख्तलिफ दारद बुते तैयार मां, राजन में तू राजा कहिए पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा, पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्मा, बस तेरी उस्तत असी इसलिए करदे हां कि तेरे चरणा नाल साडी सांझ बन जावे, साडी झोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे रहिए।

एक मुसलमान वीर ने कलम चुकी ते तवी दा हाल लिखना शुरू कीता। गुरु अर्जन प्यारे क्या खेल रचाए, ओ कहंदे ए उनां दा खेल सी। कौन है चंदू, इतिहासकार ने इतिहास लिखदियां लिखदियां चंदू ते दोष दिता, जहांगीर ते दोष दिता, लेकिन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी दास ने बाणी पढ़ी, किसे पंक्ति विच भी किसे नु उलांबा नहीं दिता। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाह। किसे भी थां ते कोई उलांबा नहीं दिता। कहंदे ने के गुरु अर्जन प्यारे क्या खेल रचाए, ते तवी किस तरह दी सी। अंगारों की मानो तपी लोह पर ही, जो बैठे हुए हैं समाधि लगाए। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जदों

ना कोई चिट्ठी पाई, मन तड़फदे, अगे ता एक मिंट भी पिता गुरु तू दूर नहीं सन रहंदे, पर हुण ता किन्ने दिन बीत गए, कोठे ते खलोते ने, ओ राह पे तकदे ने, जिस रस्ते तू पिता गुरु रामदास दा कोई सुनिया आना, पर रस्ता खाली, आकाश ते बदल छाए ने, ठंडी ठंडी हवा वग रही, बिजली चमक रही, मन उदास है।

लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही उथे तेरी वही कड़ी जाएगी तेरे लेखे जो तू लिखे तू आप लिखे किसे होर ने नहीं लिखे इस वास्ते खुद मनुष्या जीवन है नाम जप के सिमरन करके भजन करके अपने चंगे कर्म बना लै नहीं तो साहब गुरु नानक पातशाह कह रहे।

0: एडे कीमती श्वास पाए जिन्हां नाल तैं जपना सी श्री वाहिगुरु। उस मालक नूं ही विसार बैठा, इत्थे दी तां सोझी रही, इत्थे तां चंगा घर बना लिया, लेकिन अगां जिस घर विच जाके रहना सी उहदा चेता ही कोई नहीं। साथ संगत बोलो श्री जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता न, ओ अगे दी चिंता तेनू विसर गई। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नू तारदे होए एक नगर दे बाहर आके बैठे, की वेख्या एक बिरध बाबा जो अपने बच्चियां नू बड़ी ताड़ना कर रहे, ए कम करो ओ कम करो, जे कम नहीं करोगे तो भुखे मर जाओगे। ते इस बिरध बाबे ते धन गुरु नानक पातशाह दी नजर पै गई, ते आख्या जा मर्दानिया ओ बाबे नू बिरध नू इत्थे साडे कोल लै के आ। मर्दाना गया आख्या बाबा तेनू परमेश्वर दे रूप धन गुरु नानक पातशाह जो इस वक्त जगत नू तार रहे हैं आज इस नगर दे बाहर आए हैं और उना दी नजर तेरे उत्ते पै गई है। उना ने तेनू अपने पास बुलाया, ते जदों ओ बिरध गया ते पातशाह धन गुरु नानक देव कहन लगे आ बिरध बाबा हुण तां घर दे जंजाल छड दे, क्योंकि बहुत बीती थोड़ी रही, बहुत बीत गई है, हुण तां थोड़ी रह गई है, पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते आ इस बूटे नूं रोड़ के लै जा। साथ संगत बोलो श्री हुण परमेश्वर दा नाम जप लै, वेला है, जे नाम जप लवे तां असी तेनू मुक्त कर देंगे। ओ बिरध बाबा कहन लगा पातशाह आ अपनी मुक्ति तुसी अपने कोल रखो, मैं मुक्त होना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि जे मैं ना होवा तां कर दे आ कम कार कौन करेगा, धंधे कौन चलाएगा, आ मेरे पुत्रा नूं तां कोई सोझी नहीं। साहब जी कहन लगे अच्छा भाई तेरी मर्जी, असी तां हुण बचन कर दिता है तेनूं मुक्त करन दा, लेकिन हुण जदों तू कवेंगा ना मुक्त कर तां करांगे। साथ संगत बोलो श्री साहब जी चले गए। कुछ समा पा के मुड़ उस नगर विच्चों लंघे, उस बिरध बाबे दे परिवार ने गुरु नानक पातशाह नूं पछाण लिया। बिरध बाबे दे लड़के धन गुरु नानक पातशाह नूं अपने घर लियाए, आख्या महाराज तुसी ओही हो जो साडे आ बुजुर्ग पिता नूं उपदेश दिता सी कि नाम जप लै मैं तेनू मुक्त कर दिया। पातशाह कहन लगे हां किथे है ओ, अंतर जामी सब कुछ जान देख। आख्या किथे है ओ, तां परिवार दिया ने आख्या जी ओ तां कुछ साल हो गए हैं, ओ तां गुजर गए हैं। साहब जी कहन लगे अच्छा अंतर ध्यान हो के जान तकिया तां गुरु नानक पातशाह ने के ओ बिरध बाबा इन्हां दे ही घर बलद दी जून पा के, बैल दी जून पा के खड़ोता है। साथ संगत बोलो श्री साहब जी ने मर्दाने नूं आख्या जा ओ सामने बैल खड़ोता है ना, उदे कान विच पिछले जन्म दी सोझी पा, आख तेनू गुरु नानक पातशाह आए हैं मुक्त करन वास्ते, जे तू आखे तां कर देइए। उन्हें सिर हिलाया जिवें कहिंदा होवे कि मैं मुक्त नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि 500 दा तां जे मैं मर गया 500 दा तां ए नुकसान होवेगा परिवार नूं, ते 500 दा नवा बैल लियाना पवेगा, मैं मुक्त नहीं होना चाहुंदा। पातशाह से कहन लगे चल मर्दानिया अजे इसने होर मोह दियां चपेड़ां खानियां। कुछ समा बाद गुरु नानक पातशाह मुड़ उत्थों दी लंगे तां की वेख्या, आ बिरद बाबे दी आत्मा कुत्ते दी जूनी विच घर दे बाहर खड़ोती हुई है, कुत्ता बनिया है। साहब जी कहन लगे, आ मर्दानिया आ जेड़ा आ कूकर बैठा है ना कुत्ता, आ पता ही कौन है, आ पिछले जन्म विच ओही बिरद बाबा है। पातशाह इस हालत विच आख्या, हां हुण भी जाके पुछ लै जे मुक्त कर दईए इस नूं। मर्दाने ने पिछले जन्म दी सोजी दे के उसदे कन विच याद कराया, ते ओ इवें भोकिया जिवें कहिंदा होवे, ना महाराज मैं अजे भी मुक्त नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि मेरे जिहड़े लड़के हन ना ओ ऐसे अणभोल हन, जो सौंदे हन उहनां दी नींद ही नहीं खुलदी, ते मैं इस वास्ते बाहर खड़ोता हां पैरे ते के कोई घर दा धन ना लुट के लै जावे। साध संगत बोलो श्री साहब जी हसे आख्या, चल मर्दानिया अजे होर जूनिया पाल। कुछ समय बाद जदों एक मरण लगा, ख्याल उस थां ते गया जिथे घर विच धन दबिया सी, ते सप दी जूनी पा के उस धन ते जा बैठा। एक दिन घर कोई नहीं सी, आ जितने आदमी सन खेतां विच गए सन, माइयां बीबियां कपाह चुनन गईयां सन, एक गोदी दे बच्चे नूं पंगूड़े विच पा गई, ते जदों ओ पिछों बच्चा रोया, ए मोह दा मारिया होया कि मैं जाके बच्चे दा मन परचावां, खुड विचों निकलिया, रस्सी दे राहीं उतरदा होया पलंग ते पंगूड़े विच आ रहा, ए नहीं समझिया कि मैं सप दी जून विच हां। ताईं किसे ने वेख लिया, लठा नाल मार मार के थां ते खत्म कर दिता। गुरु नानक पातशाह चौजी प्रीतम संसार नूं तारदे होए कुछ वरिया बाद मुड़ उस नगर विचों दी लंघे, तां की वेख्या, ए बिरद बाबे दी आत्मा एक कीड़े दा रूप धार के गंदी नाली विच पई होई है। साध संगत बोलो श्री साहब जी ने आख्या, मर्दानिया आ जिहड़ा कीड़ा नाली विच पे है ना, इस नूं बाहर कट। ओ पातशाह इस कीड़े नाल तेरा की कम है? मर्दानिया कम है। मर्दाने ने टके दे नाल कीड़े नूं बाहर कढ़िया, साहब जी ने उत्ते जल पुआया, अपनी तली ते रख के पिछले जन्म दी ज्ञात दे के आख्या, क्यों बिरद बाबा तेनू हुण भी मुक्त कर दिए जां हुण भी जोनियां भोगणियां? साध संगत बोलो श्री। उस वेले शरीर कड़कड़ा के साहब जी ने ज्ञात जो सोजी जो दे दिती सी, ते फिर आवाज आई, पातशाह मैनू हुण मुक्त कर दे, मैं इस मोह दे किचड़ विच पै के बलद दी कुत्ते दी सप दी कीड़ा आदक जूनियां पाईयां, आ जिन्हां दे वास्ते मैं एडे पाप कीते, जिन्हां दे खातर मैं लोकां नूं धोखे दे के धन इकट्ठा कीता, ओ परिवार दा कोई भी संबंधी मेरे नाल ना निभिया, इस वास्ते पातशाह जी हुण कृपा करो, बहुते फिर वहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करके बख्श लो। साहब जी भी कहंदे हन ना पाणी विच, बहुते फिर वहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करो पातशाह जी, हुण मुक्ति दियो। तां साहब जी ने जल दे छट्टे दे के आप निरंकार दा रूप संतान गुरु नानक पातशाह पशु परेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, किस किस नूं नहीं तारे, आ कीड़े उपर भी जल दे छट्टे मार के आख्या, जप श्री वाहे गुरु, तुसी भी जपो सारे श्री वाहे सतनाम श्री वाहे गुरु ते छट्टे मार के जदों उस कीड़े नूं साहब जी दी नजर पई, ओ कीड़े दी जून छड़ के बिरद बाबा दिव मूर्त धार के गुरु नानक पातशाह दे अगे आ खड़ोता। सारे ही परिवार दे संबंधी लोग पिंड दे वासी इकट्ठे हो के आ चोज वेख रहे हैं। आवाज आई बिरद बाबे दी, उस रूप विचों परिवार दिया नूं आख्या, आ जो महापुरख आए हन ए रब दे रूप हन, गुरु नानक पातशाह निरंकार दा रूप है, इन्हां दे चरणों विच पाओ तां तुहाडी कल्याणता है, इन्हां दा बचन मनोगे तुहानूं सारे सुख प्राप्त होंगे। इस वास्ते साहब धन गुरु नानक पातशाह कहंदे हन, नानक आखे रे मन सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। इन्हां श्वासां दे नाल दिहाड़ी तेनू 24,000 श्वास मिलदे, उन्हां श्वासां नूं जप जप के सफल कर। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले आप क्या करदे सन, दिहाड़ी एक पाठ सुखमनी साहब दा कर लै तेरे दिन दे लिते हुए 24,000 श्वास सफल हो जाणगे। साथ संगत बोलो श्री
1: वाहे।
0: फिर आप बड़े प्यार नाल क्या करदे सन, जे कोई शी माला पहली पौड़ी दियां रोज कर लवे ना, मेरा ते गुरु नानक ओदा जामन होया, मैं नरकां विच नहीं जान देंगा। प्यारी साथ संगत जीओ, आ मनुच्छा जीवन जो मिलिया ना, आ जिस तरह इत्थे अपना घर बढ़ाया, अगां भी घर दी सोचो, जो घर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता ना। उथे तां साहब जी कहिंदे ने, कूड़ निखुटे नानका ओड़क सच रही। उथे जेड़े कूड़ियार हन उन्हां नूं थां नहीं मिलनी, उथे तां सचियारां नूं थां मिलेगी। भावें कोई भी होवे, किसे जाति दा होवे, किसे मजहब दा होवे, किसे धर्म दा होवे, जे उसनूं परमात्मा नूं याद कीता है, गुरु नानक पातशाह दी आराधना कीती है, नाम जपिया, तां कबीर जी निर्णय करदे हन गुरबाणी विच के कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, ओ कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। इस वास्ते गुरु नानक पातशाह कहंदे हन, हुण वेला ही मेरी एक सिख्या लै लै। दुनियावी सिख्या तां लैंदा है ना, एक मेरी सिख्या भी लै लै। नानक आखे रे मना।

गौड़ी चेती, शब्द भी गौड़ी चेती श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच उसी राग विच ए शब्द उचारिया है भगत जी ने। उपर सिरे लेख है गौड़ी चेती भगत कबीर जी का।

रो लिया रो रो के मेरे धन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुत हो पातशाह बस अदूर कहन लगे मरदाने बख्शी है। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनु पुछ के बख्श दो ये तो थोड़ा बिरद जो शरण आवे तो संत लावे ए बिरद सॉरी संदा तो हजूर ने अमे दृष्टि तकिया तकिया त्रोड़िए फिर जप सतना संसार रोगी नाम त्रोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन कोई गाड़ी बाणी करे नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेनू नरंकार ने माया दिती है दान पुण्य को आज माया भी कर सत्य हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहना पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चलते मैं थोड़ी सेवा तुहानू प्रसाद छकावा दुध पिलाओ अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पूछने वाली गल चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह अदूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुकुम ते जे हुकुम मनेगा तो फिर ही साडा सिख बन सिखी गल्लां विच नहीं गल्लां दी सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुकुम हुकुम मनिए होवे परवान ता खसमे का मह करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करिए असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम दा पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह और करोड़िए चरण है पातशाह मैं गरीब ने भी बख्शिश कर दिती है हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आता है फिर जिना संभाल लेता है वह पाए करोड़िए बख्शिश होगी थोड़े उत्ते भी गुरु की बख्शिश होगी बख्शिश वाला समा मिले बख्शिश तो शरीर ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्हों के भागा विचे बख्श दो वे आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्हों ने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा चौड़िया ये मालक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है ते कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे माई भाई कीर्तन दा अमृत पी तो ए दात गुरु दी अपनी है हजूर कहण लगी मरदानिया रवाब चुकी ते शब्द दी अखीरली तक पड़ी मरदाने ने रवाब चुकिया ते बाबे ने सोने गले च ए शब्द का की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

आनंदपुर साहब, अपने दिल्ली आन दे मनोरथ नु स्पष्ट करता सी। जिस वक्त कश्मीर दे 500 पंडित पंडित कृपा राम जी दी अगवाही हेठ साहब दी शरण विच आए हन, आनंदपुर साहब अपनी बिपता ते कष्ट दस्या है, साहब ने बड़े प्यार नाल सुनिया। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह साहब 9 साल दी आयु है, अपने निरंकार स्वरूप पिता नू उसका उपाय पुछदे हन। साहब उस वेले स्पष्ट करते हैं कि इस वेले एक महान महापुरुष दे बलिदान की लोड़ है, एक महान महापुरुष दे बलिदान की लोड़ है। दशमेश पिता फिर अगों जवाब देंदे हन कि हे सच्चे पातशाह, हे मेरे निरंकार स्वरूप पिता, तुहाडे कोलों इस मात लोक च होर केड़ा वड्डा महापुरुष हो सकता है। साहब ने चाले पाते स्पष्ट करता किस करके आए। साहब ने आके अपने बलिदान दे खून दे नाल उस महान शहादत दे खून दे नाल एक धर्म दे आले दुआले राम कार खिंचती। और साध संगत जी आ जेड़ा श्लोक च आ रहा इहदे च की फरमा रहे हैं, हर एक सोग जाके नहीं बैरी मीत समान, उस कतलगाह दे विच ही ए श्लोक च आ रहे हैं ते फरमा की रहे हैं बैरी मीत समान। साहब कह रहे हैं कि जन्ने सानू हिंदू प्यारे हैं उन्ने ही मुसलमान प्यारे हैं, मुसलमानां नाल तां कोई वैर नहीं साहब दा, असलाम मजहब नाल कोई वैर नहीं है। साध संगत जी आप याद करिए, गुरु नानक पातशाह दे सजे ते खब्बे बैठे कौन सन, एक मुसलमान ते एक हिंदू। गुरु अर्जन पातशाह ने जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब दी सर्जना कीती है, साहब ने जदों गुरु ग्रंथ साहब नू साजिया है ते उस दे विच अल्लाह नाल पाक मोहब्बत करन वालियां दी अल्लाह दे प्यारियां दा कलाम भी उसे सत्कार नाल दर्ज कीता है। जी आया क्या है जिस तरह भगवान दे भक्तां दा, जिस तरह उन्हां दे प्रेम नूं सत्कारिया है उसे तरह उन्हां दी पाक मोहब्बत नूं सत्कारिया है। एक सौमे दे विच साध संगत जी गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, ते फिर तां एक चीज तां साबित हो जांदी है कि इको ही धर्म है, इको ही मजहब है जिसका नाम प्यार है, जिसका नाम प्रेम है, पार ब्रह्म लिव एकम। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं कि पार ब्रह्म निरा प्यार ही प्यार है। साध संगत जी गुरु अर्जन पातशाह ने दरबार साहब दे विच किस निमरता दे नाल फिर चार दरवाजे चारे मजमा वास्ते खोले हैं, चारे दरवाजे चारे वर्णा वास्ते खोले हैं, कोई ऊंच नीच नहीं रखिया, प्रेम दे विच कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात नहीं, प्रेम सांझा है, आ नरोल ते निर्मल है। अठवें पातशाह साहब कोमल उम्र है, दिल्ली दे विच तशरीफ रखते हैं, एक जानलेवा बीमारी फैल गई है, होया कि मरने शुरू हो गए लोग, बहुत तादाद मरने शुरू हो गए। सारिया ने आपस गलबात की, अठवां गुरु नानक आया होया, ओदी शरण च भजो, जेड़ा आई जाता है ठीक होके वापस जाई जाता,

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजे ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी भरा पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे रायपोए की तलवंडी का राजा राय बुला और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच। मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान ने अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक वारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पा लै आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलियां सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग कुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्म दिन ते चोला सीह के रख दी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच ए खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वह प्यारे जड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

जद इतने बचन कहे भैन जी है बेबे नानकी तुसी वड्डे हो तुसी मेरे पैरां ते मत्था टेको ए नहीं हो सकदा साध संगत एक एक लफज विचों साडे जीवन वास्ते सिख्या है ते वखरी गल इना गल्लां नूं कोई मन्ने भावे ना मन्ने पर सुख तां मनण विच ही है। हुण तां गुरु नानक साहब ने भाई मरदाने नूं कहा मरदाने आ हुण तुसी जा के भाई अजय राम जी नूं लै के आओ। शहर वासियां नूं पता लग गया सी दीपमाला उस वेले शुरू हो गई कि धन गुरु नानक साहब का अज जन्मदिन मनाने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पर कुछ देर बाद धन गुरु नानक साहब आप उठे ता पिता मेहता कालू जी पुछदे ने बेटा किथे चले। साहब जी कहने लगे मरदाना भाई अजय राम नूं वैराग विच उठा नहीं सके। धन गुरु नानक साहब आप उस जगह पहुंचे जिथे भाई अजय राम जी वैराग विच बैठे शब्द गा रहे सन। अगे भाई मरदाना कोल बैठे शब्द पढ़ रहे और वार वार कह रहे सन जय राम जी उठो। धन गुरु नानक साहब आ गए ने पर भाई अजय राम जी वैराग विचों उठ ना सके क्योंकि ए प्यार भागा नाल मिलदा है और इस प्यार नूं ही जानदा है जिसने ये प्यार किया। भगत कबीर जी कहंदे ने सो कत जाने पीर पराई जांके अंतर दर्द ना पाई। भगत रविदास और भगत कबीर साहब दोनों दे शब्द पढ़िए एको ही गल नजर आती। भगत रविदास वह भी मन की तड़प दसते ने और भगत कबीर साहब जी कहंदे ने लागी होए सो जाने वीर राम भगत अणियाले दी कि यह प्रेमा भगती दे तीर जड़े ने जिन्हों लग जा जिन्हों तीर लगते ने उही जाने

गुर अंगद की ते कुमारे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के नाम विचारे।

हमारी जेवा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जमे आ हर तुम बड अगम अथाह।

निर्मल निर्मल सूर्या, निर्मल निर्मल सूर्या, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता।

गुरु नानक दे दर दी सेवा कितनी महान है। इंद्रपुरी लख राज लखां वेरां इंद्र दी पदवी प्राप्त करके जितनियां खुशियां प्राप्त होंदियां हन उतनी गुरु के सिख नूं गुरु घर दा पानी धो के दातां प्राप्त हो जांदियां हन। इंद्रपुरी

कितनी बख्शिश है। गुरु के सिखां ते जो गुरु नानक दे दर दा पानी ढो के गुरु के सिखां नूं इशनान कराउंदे हन। भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं ऐसे गुरसिखां नूं पंज वार गंगा दी यात्रा कोई कर लवे, पंज वेरा पराग राग जाके इशनान करे, उस थां दी यात्रा करके आवे, इतना पुन है एक गुरु सिख नूं इशनान कराउण दा। उचारण करो श्री वाहिगुरु।

अश्वमेध जग फल सिख को जीवाएगा। एक बेर हां प्यार दे नाल गुरु के सिख नूं पानी पिला देना, बड़े प्यार दे नाल प्रसाद छका देना। हजूर कहंदे हन उस गुरसिख दा अश्वमेध जग हो गया समझो, जिसने एक नूं प्रसादा छका दिता है।

किसे गुरु के सिख नू शब्द सिखा देना, शब्द चेते करा देना। जिवें पुरातन समयां विच गुरु के सिख घर घर जाके गुरमुखी अखर जाके बच्चियां नू सिखाउणे, शब्द पढ़ाउणे, जपजी साहब दा पाठ सुनाउणा, सुखमनी साहब पढ़न दी जाच दसनी, फिर गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरनी लाउणा, एक बड़ा वड्डा पुन है, बड़ा वड्डा फल प्राप्त हुंदा जे किसे नू एक शब्द सिखा देईए। भाई साहब गुरदास जी कह रहे हन, जैसे सत मंदिर, बड़े सुंदर सोने दे मंदिर सत उसार देने, ओ दान कर दईए, एडा वड्डा दान है गुरु के सिख नू शब्द सुनाउण दा। जैसे सत

थोड़ा जिहा काल विहार विच समा बधा के इस गुरु के सिख ने भी दो पैसे जोड़ ले। भाई मेरी पीरी दे मालिक धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह इस इलाके विच आउणगे भाग लाउणगे ते मैं ए दो पैसे हजूर दी पेटा रख के ते रो के अरदास।